मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तिथि 29, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 होने को हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है दैनिक प्रसारण चिंतन।
1: जीवन में जो कुछ भी स्थितियां हैं उन्हें खेल खेल में निभाया जाए तो हम देखेंगे कि हमारा दुख भी सुख में बदलेगा। ये जीने के अंदाज हैं जो मनुष्य को सीखने को मिलते हैं शास्त्रों से, सत्संगों से और साधकों के नज़दीक बैठने से। जैसे जैसे हम अपने दोषों को छोड़ते हैं हमारा बल बढ़ता जाता है, हम छोटी मोटी बाधाओं से पार होते जाते हैं, हमारी सहन शक्ति बढ़ती है और आत्मिक बल भी बढ़ता है। कहा जाता है मानव परिस्थितियों का दास है, यानी कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं और वो जिस प्रकार चाहती हैं मनुष्य को चलाती हैं। हम परिस्थितियों के मकड़ जाल में उलझते जाते हैं, लेकिन यदि परिस्थितियों को हम भाग्य का एक खेल मानकर देखें और उनके अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करें, उनसे संघर्ष करें, विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य न छोड़ें, तो हम पाएंगे कि हमारी जो बाधाएं अभी हमें

0: बहुत ही कठिन लग रही हैं वो बाद में आसान दिखेंगी। भगवान सच्चिदानंद सदगुरु के रूप में मानव की शक्ति के स्रोत होते हैं। जीवन में मनुष्य को सत्य, दान, कर्मठता, दया, क्षमा जैसे सद्गुणों को अपनाते हुए किसी की निंदा नहीं करना, जिसे अनुसूया कहते हैं, इस गुण को अपनाना चाहिए। किसी के गुणों की प्रशंसा करें, निंदा करने की प्रवृत्ति से बचें, सद्गुण के ग्राहक बने, इसे कभी छोड़े नहीं। जो सद्गुण हैं वो मानव की महान शक्तियों के स्रोत हैं। विशेष करके क्षमा करने का जो गुण है वो मनुष्य को बहुत ऊँचा उठा देता है। वैसे कहा गया है, क्षमा उसी भुजंग को शोभती है जिसके पास गरल हो। उसको क्या जो विषहीन, विनीत, सरल हो। कहने का आशय ये है कि क्षमा यदि आप करते हैं किसी को, तो ये भी ज़रूरी है कि आपके अंदर वो शक्ति हो कि आप किसी का नुकसान कर पाए, तभी आपको क्षमा शोभा देती है। यानी कि अपने व्यक्तित्व को, अपने आत्मबल को इतना अधिक बढ़ाना है कि हम में ये आत्मसम्मान का भाव आ जाए कि हम किसी को क्षमा करने के गुण से आप्लावित हो जाएं। मनुष्य के अंदर जब ये गुण आ जाता है तो व्यक्तित्व में चमक पैदा हो जाती है। मनुष्य को सद्गुणों को जीवन में अपनाना चाहिए। बनावटी जीवन पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम इससे जितना ही बचेंगे उतनी ही शांति की ओर जाएंगे। हमारी ज़िंदगी जितनी बनावटी, दिखावटी, कृत्रिम होगी उतने ही हम अशांत रहते हैं, और हम जितने सीधे, सरल, सच्चे ढंग से जीवन निर्वाह करते हैं उतने ही शांत रहते हैं। आवश्यकताएं तो अनंत हैं, कभी समाप्त हो सकती हैं क्या? आज हमें कहीं अगर एक बित्ता जगह मिल जाए तो हम एक हाथ की कामना करते हैं, एक हाथ मिल जाए तो 10 हाथ की, और ये हमेशा बढ़ती जाती है। ज़रूरतें कभी सिमटती नहीं, सदैव सुरसा की तरह मुँह फाड़े रहती हैं। ज़रूरत है कि इसे हम छोटा करें, तब हम जीतेंगे। इससे जीवन की छोटी छोटी कमजोरियाँ घटेंगी, एक एक करके समाप्त होती जाएंगी। हमारी कामनाओं का जो आवेग है उसे अगर हम रोक लें तो आगे बढ़ते जाएंगे। अपने अभिमान को विनम्रता से जीतना होगा, उन्नति होगी। ईर्ष्या द्वेष को सम्यक दृष्टि से देखना होगा, सब अपने नजर आएंगे। इस दुनिया में कौन पराया है? सब तो उसी आत्मा के अंश हैं, तो फिर बैर किससे करना? प्रसन्नता यहीं शुरू होती है, भक्ति यहीं शुरू होती है। परिस्थितियाँ जो भी हो उनके साथ तालमेल बिठाकर आवश्यकताओं को कम करते जाएं, तो सुखी होने का इससे उत्तम मार्ग कोई दूसरा नहीं है, और इसी को भक्ति प्राप्त करने का साधन मानते हैं। ये पहली सीढ़ी है ईश्वर को पाने की। ऋषि मनुष्यों ने सूत्र कहा है, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आवश्यकताओं को सीमित करें। मानव जीवन में सद्गुणों का बड़ा महत्व है। गुणों को प्राप्त करें, क्रोध को जीतें, बैर का परित्याग कर दें, कामनाओं का त्याग कर दें। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, ईश्वर की ओर जाने का रास्ता यही है। आइए इस दिशा में सोचें, विचार करें।
1: चिंतन, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये दैनिक प्रसारण। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषक श्रोताओं के लिए हमारा प्रातःकालीन कार्यक्रम कृषि चर्चा। इसके अंतर्गत आज का विषय है जलवायु परिवर्तन और पशुपालन, और इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सविता कुमारी।
2: आजुक कृषि चर्चा आप सविता कुमारी से सुनल जाए। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, ई वैज्ञानिक प्रमाण है जे जलवायु परिवर्तन भ रहल है, जकर प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पशुधन पोषनिहार पर पड़ रहल अछि। परिवेश में परिवर्तन भेला सँ पशुधन के सुरक्षा कोना होयत, ताहि लेल हमरा लोकन के ध्यान देबऽ पड़त। जेना आहार व्यवस्था, प्रजनन, पशुक उन्नत प्रजाति, आवास ओ स्वच्छता, रोग निरोधक ओ निवारणक उपाय इत्यादि होयबाक चाही। स्नेही किसान भाई बहन लोकन, बाढ़ि ओ सुखाड़ वाला क्षेत्र में चारा बैंकक स्थापना होयबाक चाही, जाहि सँ प्रचुर मात्रा में सुखल चारा, भुस्सा, पुआर आदि वांछित बेर पर उचित मूल्य पर उपलब्ध भ सके। पॉली बैग में घासक अचार अर्थात साइलेज के भंडारण करबाक

0: चाही जे विपत्ति ओ आपातकालमे पशुके खुएबाक लेल काज आबै। गैर पारंपरिक चारा संसाधनके रूपमे गाछक पात, आमक आँठी, कुसियारक शीर्ष, कटहर, जामुन, केरा, बाँस, मकई के लेढ़ी, कुसियारक सिट्ठी इत्यादिक व्यवहार कऽ कऽ आपातकालमे पशुक जीवनक रक्षा कयल जा सकैत अछि। बदलैत परिवेशमे पशुधनक आवास व्यवस्था पर ध्यान देबाक चाही, जाहिसँ पशु स्वस्थ, तनावमुक्त उत्पादन ओ प्रजनन लेल सक्षम रहै। स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, पशुधनक प्रजाति पर ध्यान दियैक जे कम लागतमे बेसी आमदनी दैक। गर्मीसँ बचेबाक लेल पशुशालाक अगल बगलमे छायादार गाछ लगेबाक चाही। आधुनिक पशुपालन हेतु पशुशालामे बिजलीक पंखा, कूलर आदि लगा सकैत छी। बदलैत वातावरणमे गर्मी दिनानुदिन बढ़ि रहल अछि, तैँ बेसीसँ बेसी देशी प्रजाति, जकरा नस्ल सेहो कहैत छी, देशी नस्लके पशुके पोसबाक चाही। कारण एकरा सभमे रोग प्रतिरोधक क्षमता बेसी होइत अछि। देशी पशुमे विषाणु, जीवाणु, परजीवी इत्यादि सभसँ लड़बाक ताकत अर्थात रोग प्रतिरोधी क्षमता बेसी होइत अछि। इएह कारण जे बदलैत वातावरणमे देशी पशुक संरक्षण ओ एकर पोसब बेसी लाभदायक होइत अछि। एतबे नहि, स्नेही किसान भाई बहिन लोकनि, हमरा लोकनिके प्रजनन लेल कृत्रिम गर्भाधान तकनीकके अपनेबाक चाही, जे सहज, सुलभ ओ सुरक्षित प्रजननक लेल आधुनिक ओ उन्नत तकनीक अछि, जाहिमे एहिसँ सम्बन्धित उपकरण ओ जमल सीमेनके एक ठामसँ दोसर ठाम लऽ कऽ कृत्रिम गर्भाधानसँ पशुके सहवासजनित बीमारी सभसँ सेहो बचाव होइत अछि। एतबे नहि, परिवेशजनित आपदा विपदाक बेरमे पशुक प्रजनन लेल कृत्रिम गर्भाधानक सहारा लेबाक चाही। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न होइत अछि। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषक श्रोताओं को संबोधित प्रातःकालीन कार्यक्रम कृषि चर्चा। विषय था जलवायु परिवर्तन और पशुपालन, और इस विषय पर जानकारी दे रही थी सविता कुमारी। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: क्या कीजिए,
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता

0: अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को लेकर। डॉक्टर उत्सव राज शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, जन्म से लेकर 28 दिन के बारे में कहा जाता है कि जो अवस्था होती है वो नवजात अवस्था होती है, उसमें बच्चों के लिए वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसको अपनाया जाना बहुत ही जरूरी है?
3: देखिए, ये नया जो गाइडलाइन है NNF का, उसमें यहाँ तक करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड नाल जो होता है उसको काटने से पहले माँ की छाती पे लगा के माँ का स्तनपान शुरू करवाते हैं। यानी इससे आप समझ गए होंगे कि स्तनपान का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। माँ अगर सिजेरियन यानी ऑपरेशन से भी बच्चा होता है, उस कंडीशन में भी बच्चे को उल्टा करके माँ की छाती पे लगाएं, बच्चा जो दूध खींचेगा, अगर वो एक या दो बूंद भी दूध आ रहा होगा वो अमृत है उसके लिए।

0: जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो गाढ़ा पीला दूध होता है। कुछ चीज़ें जो बच्चे के बारे में कहते हैं हम लोग, कि जब बच्चा पैदा होता है तो हम घर वालों को क्या समझाते हैं। पहली चीज़ कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं 6 महीने तक, ऊपर का शहद, घुट्टी, पानी कुछ भी नहीं। कहते हैं कि कोई भी नाक में या कान में किसी तरह का कोई तेल नहीं डालना है बच्चे के।
1: अच्छा।
0: साबुन तेल पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने तक नहीं करना है, ना कि बच्चे के चमड़े बहुत नाजुक होते हैं, किसी भी चीज़ से रिएक्शन हो सकती है। तो साबुन तेल पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने तक ना करें। 1 महीने के बाद जब आप लगाते हैं बच्चे को, तो सिर्फ नारियल का तेल इस्तेमाल करें, जो कि IAP भी कहता है, किसी और तेल का इस्तेमाल ना करें। जब भी आप बच्चे के ऊपर पाउडर स्प्रिंकल करते हैं तो वो उड़ के नाक में, आँख में जाता है, जो कि एक सर्दी का छींक का कारण बन सकता है। तो पाउडर का इस्तेमाल 1 महीने के बाद भी अवॉइड करें आप। इसके अलावा बच्चे को हमेशा सूखा रखें, एक लेयर कपड़े में लपेट के रखें, अंदर का लेयर जो रहेगा वो हमेशा सूती कपड़े का होगा। ठंड में खास करके ध्यान रखना होता है कि सिर, हथेलियाँ और तलवे, ये 3 चीज़ ज़रूर ढके रहने चाहिए, ताकि हीट लॉस कम से कम हो बच्चों का। ये सर्दियों में खास ख्याल रखने की चीज़ है। बच्चे को नहला सकते हैं आप कमरे के अंदर गुनगुने पानी में, बिना साबुन के, पहले 1 महीने तक, जिसमें आप नहलाने के समय में पानी इतना ही रखेंगे टब में जिसमें बच्चे का सर डूब ना पाए, कि अच्छा, गलती से अगर आपके हाथ से छूट जाता है तो बच्चे का सर अंदर ना जा पाए। और जब भी आपके हाथ का मूवमेंट रहेगा बच्चे पे पानी डालने का, तो हमेशा सर से पैर की तरफ, ताकि कभी भी अगर आप पानी डाल रहे हैं तो वो बच्चे के नाक और मुंह में ना चला जाए और उससे एस्पिरेशन या बच्चे को परेशानी या चोकिंग ना हो। क्योंकि बच्चे आते हैं ऐसे कि हम नहला रहे थे, बच्चे ने सरक लिया पानी और उसके बाद इसको सांस लेने में दिक्कत हो गई, नीला पड़ गया। इसके अलावा ध्यान रखने की चीज़ होती है कि पहला टीकाकरण हेपेटाइटिस बी, OPV और BCG, ये बर्थ पे बच्चों को लग जाना चाहिए, नहीं तो 48 घंटे के अंदर कम से कम। ऐसे BCG 3 महीने तक लग सकता है, मगर एट बर्थ लगाना बेस्ट माना जाता है। OPV उसी तरह है, फिर जो आगे 1.5 महीने और 2.5 महीने, 3.5 महीने के टीकाकरण होते हैं वो भी उतने ही ज़रूरी हैं, बट अभी हम लोग नवजात स्थिति की बात कर रहे हैं। इसके अलावा माँ के दूध में विटामिन AE के कम रहता है, तो एक मल्टीविटामिन अगर आपके डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं वो 6 महीने तक देना चाहिए। साथ ही साथ विटामिन डी, सारे बच्चे देखा गया कि ऑलमोस्ट 97% ऑफ इंडियंस आर विटामिन डी डेफिशिएंट, और माँ के दूध में भी विटामिन डी की मात्रा है वो नहीं के बराबर होती है। तो विटामिन डी का जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा डोज दी जाती है, जो टर्म बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी कम डोज दी जाती है, वो कम से कम 2 साल तक बच्चे को ज़रूर दें।
1: नवजात अवस्था में
0: जी
1: बच्चे में क्या कुछ ऐसे लक्षण आए कि अभिभावक को या माता पिता को तुरंत से डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत हो सकती है?
0: जी, अगर बच्चा माँ का दूध ना ले रहा हो, सुस्त पड़ा हो, 6 से 8 घंटे में पेशाब ना कर रहा हो, या उसका रंग सफ़ेद या पीला पड़ रहा हो पूरी तरह, तो ऐसे कंडीशन में तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं।
1: थोड़ी भी देरी उचित नहीं है,
0: थोड़ी भी देरी
1: उचित सोचना नहीं है,
0: सोचना नहीं है। या अगर छोटे बच्चे को 100.2 से ज़्यादा बुखार आए, वैसे कंडीशन में भी सोचना भी नहीं है। कोई भी लक्षण आपको दिख रहा है बच्चा सुस्त है, इन्फेक्शन ही निकलेगा, हो सकता है शुगर लो होगा उसका, लेकिन वो सारी चीज़ें डॉक्टर ही आपको देख के बता सकता है, चेक करके बता सकता है।
1: घर में जब किलकारी गूंजती है, खुशी का वातावरण होता है, तो हर कोई लालायित रहता है कि बच्चे को गोद में लें।
0: जी,
1: दो बातें होती है, पहली बात तो ये कि मना किया जाता है
0: जी,
1: दूसरी बात ये होती है कि खतरा होता है
0: जी,
1: क्या करना चाहिए?
0: देखिए, एक चीज़ आप समझें कि जब NICU में आपने भी देखा होगा कि बच्चों को एकदम आइसोलेटेड रखते हैं, माँ को भी अगर मिलने जाने देते हैं तो मास्क लगा के और एप्रन पहन के, तो ये सिर्फ बीमार बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे बीमार ना पड़े इसके लिए है।
1: सही।
0: और ध्यान ये रखें कि गोद में लेने से ही आप सिर्फ प्यार नहीं जता सकते हैं, आप दूर से भी प्यार जता सकते हैं। और घर में किसी को भी अगर सर्दी खांसी जुकाम है, बच्चे के कमरे में ना जाए, और अगर माँ को सर्दी खांसी जुकाम है तो वो दूध अपना ज़रूर पिलाएं, मगर कोशिश करें कि मास्क लगा लें और दूध पिलाएं।
1: तो नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को लेकर आपने इतनी बातें बताई हमारे श्रोताओं के लिए। डॉक्टर उत्सव राज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं समूह स्वर में गाया गया ये देशगान।

नारायण मिल जाएगा। ये भक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल के स्वर में। आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना।

शिव प्रिय है गंगा को। ये शिव भजन अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में।

ये शिव भजन अभी आप सुन रहे थे ब्रज सरवरी के स्वर में। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

0: अनुप जलोटा के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब सुनिए रामचरितमानस गान। आज के प्रसंग में मुख्य स्वर राजेंद्र कचड़ू का है।
1: एपिसोड 65, 6-5।

एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 1,00,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। ये सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस कांड। आज के प्रसंग में मुख्य स्वर राजेंद्र काचरू का था। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। कार्यक्रम नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे अब से कुछ देर बाद, यानी प्रातः 7:05 से। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का प्रसारण समय होगा 9:05 पर, जिसे हम अपने पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 9:50 पर। दिन में 12:00 1:15 पर और अपराह्न 2:30 पर। दिन के 11:00 आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम। कलाकार होंगे भीमसेन जोशी।

महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी संसार लेकर हम उपस्थित होंगे दिन में 12:30 पर। अपराह्न 3 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा के आरंभ में आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। विद्यापति गीतों का समय होगा संध्या 6:10 पर। इसके तुरंत बाद संध्या 6:25 पर आप सुनेंगे मैथिली संवाद।

गांव घर, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जागरूक गांव। प्रसारण समय होगा संध्या 6:30 से। खेती गृहस्थी, माफ कीजिएगा, किसान वाणी आप सुनेंगे संध्या 6:55 पर। कुछ फिल्मी गाने हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:50 पर। रात 8:15 पर समय होगा मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार का।

रात 10 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नोपवेशनानन्तरं 13,000 कोटि रूप्यकाधिकाः 5 परियोजनाः अनुमोदिताः। एतासु 4 रेलमार्गसम्बद्धाः, 1 च राजमार्गसम्बद्धा परियोजना अस्ति। सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन पश्चिमबंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश इत्येतेषु 4 राज्येषु रेलमार्गस्य 8 बहुमार्गीय परियोजनाः अनुमोदिताः। असौ उक्तवान् यत् आहत्य 50,4,00,000 व्ययेन एताः परियोजनाः 30,2,000 1,30,2,000 पूर्णाः करिष्यन्ते।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव संसूचितवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन बिहार राज्ये मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खण्डस्य राष्ट्रिय राजमार्ग 22 इत्यस्य 4 मानकानुसारम् उन्नयनमपि अनुमोदितम्। अस्य व्ययः आहत्य 90,500,000,000 अस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां जापानस्य रक्षामन्त्रिणा शिन्ज़िरो कोइजुमी इत्यमुना सह द्विपाक्षिकोपवेशनं करिष्यति। अपेक्ष्यते यत् अस्मिन् उपवेशने हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे रणनीतिक विश्वासः सहयोगश्च अधिकं सुदृढौ भविष्यतः, तथा स्थिरतायाः सुरक्षायाश्च प्रवर्धनं भविष्यति। उभौ मन्त्रिणौ सामुद्रिक सुरक्षा क्षेत्रे गहन सहयोगस्य अथ मेक इन इंडिया इत्यस्य च अन्तर्गतं रक्षोपकरणानां प्रौद्योगिक्याश्च क्षेत्रे अधिक निकट सहयोगस्य विषये विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः एतत् कथनं निराकृतवान् यत् चीनदेशः अरुणाचल प्रदेशे 60 किलोमीटर पर्यन्तम् अन्तः प्रविष्टः अस्ति। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे श्री रिजिजुः उक्तवान् यत् बांग्लादेशस्य छायाचित्राणि, दृश्यचित्राणि च चीनदेशस्य अरुणाचल प्रदेशे प्रवेशं मिथ्यारूपेण प्रदर्शयितुं प्रयोज्यन्ते। असौ उक्तवान् यत्

0: एतादृशानि असत्यानि अभिकथनानि सीमां रक्षतां सैनिकानां मनोबलं न्यूनीकर्तुं शक्नुवन्ति तथा अनावश्यकं भ्रमं जनयितुं शक्नुवन्ति। मन्त्री उक्तवान् यत् भारतचीनसीमा सम्बद्धः विषयः गम्भीरः अस्ति। सः जनान् आहूतवान् यत् एतादृशे संवेदनशीलविषये मिथ्यानि उत वा अप्रमाणितानि कथनानि न कुर्वन्तु। दिल्ल्यां प्रचलितस्य विशेष गहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतम् आवेदनपत्राणाम् उपस्थापनस्य अन्तिमतिथिः अस्य मासस्य चतुर्विंशतिदिनाङ्कं यावत् वर्धिता। दिल्ल्याः मुख्यनिर्वाचनाधिकारिणः अनुसारम् अधुना प्रारूपमतदातृसूची अस्य मासस्य एकत्रिंशत् दिनाङ्के प्रकाशिता भविष्यति। अभ्यर्थनानाम् आक्षेपानाञ्च प्रस्तुतेः अन्तिमतिथिः आगामि मासस्य त्रिंशत् दिनाङ्कं भविष्यति। बांग्लादेशे अद्य राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचनं भविष्यति। अस्मिन् निर्वाचने सांसदाः शासनाधिरूढस्य बीएनपी दलस्य वरिष्ठनेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर तथा एकादशदलात्मकस्य विपक्षसंयुतेः प्रत्याशी कर्नल ओली अहमद इत्येतयोः मध्ये चयनं करिष्यन्ति। पञ्चत्रिंशत् वर्षाणाम् अनन्तरं प्रथमवारं राष्ट्रपतिपदाय निर्वाचने मतदानं भविष्यति। मतदानम् अद्य अपराह्णे द्विवादनादारभ्य सायं पञ्चवादनपर्यन्तं संसद्भवने भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता

0: लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तीनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। प्रस्तुत है प्रातःकालीन दैनिक कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार मिथिला। आजुक अंक में हम छी मणिकांत झा,
1: साथी मैं हूँ मनोज। आप तमाम श्रोता को मनोज का प्यार भरा नमस्कार। साथी मणिकांत जी, आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार मनोज जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करी छी सुविचार से।
1: जरूर, व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। ये विचार हैं महात्मा गांधी के।
0: और सुविचार के बाद उनटबे छी ऐतिहासिक पन्ना। ऐतिहासिक पन्ना में अजुका तिथ अर्थात 20 अगस्त किया विशेष रूप से जानल जाइए, ते पर एक नज़र।
1: 1828 में राजा राम मोहन राय के ब्राह्मण समाज के पहले सत्र का आयोजन कोलकाता में संपन्न हुआ था। 1897 में रोनाल्ड रॉस ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया के कारक एनोफिलीज मच्छर की पहचान की। 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपेल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 23 दिन के अंदर ही इस्तीफा दिए थे। 2008 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साय राम को अमेरिका में वशिष्ठ सम्मान से नवाजा गया था। 1944 में राजीव गांधी भारत के 9वें प्रधानमंत्री का जन्म हुआ था।
0: तो ई छल आजुक इतिहास। इतिहास के बाद वर्तमान में आओ, तो एखन सौन मास चल रहा है। सौन मास में जे स्थिति परिस्थिति रहबाक चाही ठीक तकर विपरीत एखन रही रहा है। वर्षा के घनघोर अभाव अपना एक क्षेत्र में जे इसे बनल है, हालांकि मेघ तो लगे

0: दू चारि दिनसँ, लेकिन तथापि वर्षा नहि भऽ रहल हइ आओर वर्षा नहि हेबाक कारणे खास कऽ किसानी खेती जे अइ ताहिपरमे बहुत असरि पड़ि रहल हइ। पेयजलके समस्या तऽ अपनासभक एहि क्षेत्रमे लगातार बढ़ले जा रहल हइ, किएक तऽ जहन वर्षा नहि हेतै तऽ जमीनके भीतर पानि नहि जेतै, आ भीतर पानि नहि जेतै तहन फेर जे छै से पेयजलके समस्या उत्पन्न हेतै। तऽ ई वर्षाके नहि भेलासँ बहुत रास समस्या जे छै से स्वतः उत्पन्न भऽ जाइ छै, आओर ओकरा सभक बेर बेर हमसभ चर्चा इएह करै छी जे वृक्षारोपण जे अइ से एकटा महत्वपूर्ण डेग अइ, ओहि डेगके उठा कऽ हमसभ पर्यावरणके संतुलित राखि सकै छी। आओर पर्यावरण आब देखू, एखन जेना सावन भादवमे वर्षा नहि भेनाइ जे छै से बड़ा मने विचित्र बात छै, आ फेर आश्विन कातिकमे जाकऽ अगर वर्षा भऽ जेतै तऽ आओर चौपट कऽ जेतै, जेहो शनि बाँटिके एखन लोक रोपि रहै छै, रोपला है पम्पिंग सेटसँ आ कि नहरिसँ, ओ ओहि टाइममे आबि कऽ फेर बाढ़िके स्थिति उत्पन्न भऽ जेतै, फेर सभटा दहा जेतै। तऽ ई जे चक्र समयके मौसमके समयके चक्र जे छै से गड़बड़ भऽ रहलैए, तकर सभक कतहु ने कतहु हमसभ जिम्मेदार छी आओर तकरा लेल चिन्तन मनन करबाक आवश्यकता अइ। गपशप हमसभ करैत रहब, लेकिन एखन बेर भऽ रहल अइ मैथिली सुगम सङ्गीतके, तऽ आओ सुनी सुन्दर सनक ई गीत।
1: आइए सुनते हैं।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: इस गीत के बाद हम लोग चलते हैं जहां हम सबों को इंतजार रहता है। जी हां, अपने आस पड़ोस की गतिविधियां संस्कृति पे डालते हैं नज़र, यानी कि हाल चाल लेकर के उपस्थित है मणिकांत जी।
3: नमस्कार। बक्सर से भागलपुर तक 336 किलोमीटर के लंबाई में 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण है। PPP निजी जन भागीदारी मोड में बनने वाला ई एक्सप्रेस पूर्ण रूप से एक्सप्रेस कंट्रोल्ड है, यानी यही पर तेज रफ्तार मार्ग है या एकरा बीच में आर पार जेबाक कोनो रास्ता नहीं है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अध्यक्षता में काल्हि राज्य कैबिनेट के बैसार में एहि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे परियोजना समेत 13 प्रस्ताव के मंजूरी देल गेल। मुजफ्फरपुर से वाया सीतामढ़ी सोनवर्षा तक जाय वाला सड़क 4 लेन बनत, केंद्रीय कैबिनेट काल्हि एकरो मंजूरी दऽ देलक। रैयाम सकरी चीनी मिल के कुसियार किसान के सहकारी समिति बनत, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में कल राज्य मंत्री परिषद के बैसार में इस प्रस्ताव पर सेहो सहमति प्रदान कयल गेल। बैसार में कुल 13 प्रस्ताव के मंजूरी देल गेल छल, जाहिमे बैसक के बाद कैबिनेट विभाग के सचिव मोहम्मद सुहैल जनौलन जे 7 निश्चय 3 के अंतर्गत समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के परिकल्पना के अंतर्गत मधुबनी के सकरी आ दरभंगा के रैयाम चीनी उद्योग विभाग के बंद चीनी मिल के भूमि पर नव सहकारी चीनी मिल के स्थापना कयल जेबा के, जाहिमे सकरी रैयाम चीनी मिल के लेल अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के प्रतिबद्ध किसान के शामिल करैत प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति के गठन के स्वीकृति प्रदान कयल गेलै। राज्य में सांप्रदायिक तनाव, हिंसात्मक प्रदर्शन, सड़क जाम आ सरकारी संपत्ति पर हमला सनक घटना से निपटवाक लेल भीड़ नियंत्रण के लेल जिला और अनुमंडल स्तर पर दंगा विरोधी दस्ता के गठन हैत। बिहार पुलिस मुख्यालय के विधि व्यवस्था प्रभाग से इससे संबंधित आदेश जारी भ गेल। सुप्रीम कोर्ट काल्हि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA में सुधार के संस्थागत रूप देवे वाला और कैटा तकनीकी बदलाव के वकालत केलक। संगहि कहलक जे प्रवेश परीक्षा के सुरक्षा सुनिश्चित करबाक लेल संघ लोक सेवा आयोग सनक समर्पित और वैज्ञानिक रूप से सुसज्जित संस्था के जरूरत अछि। दरभंगा में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण इकाई आ हरित ऊर्जा क्लस्टर के स्थापना के लेल केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के शीघ्र पहल करबाक निर्देश देलक है। ई जिला के लेल महत्वपूर्ण उपलब्धि थिक। ई स्थानीय सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी

0: ठाकुर केंद्र सरकार द्वारा पठाओल गेल पत्र के आलोक में कहलनि। दरभंगा समाहरणालय में जिलाधिकारी कौशल कुमारक अध्यक्षता में काल्हि जिला में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लऽ कऽ समीक्षा बैसार आयोजित कयल गेल। बैसार के मध्य जिला में पेयजल आपूर्ति के वर्तमान स्थिति, प्राप्त शिकायत, नल जल योजना, नव जलापूर्ति योजना, चापाकलक मरम्मत आ नगर निकाय क्षेत्र में पेयजल उपलब्धता के विस्तृत समीक्षा कयल गेल। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा सँ सुनि रहल छी।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
0: हालचाल में पुनः अपने स्वागत है। संत रविदासक 650वां जयंती वर्ष के अवसर पर जिला प्रशासन के तत्वावधान में काल्हि श्यामा मंदिर परिसर से कलश यात्रा के आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर जिलाधिकारी कौशल कुमार कहलनि कि सामाजिक समरसता, आपसी भाईचारा आ जनकल्याणक भावना के मजबूत करबाक उद्देश्य से संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के आयोजन कयल जा रहल अछि। भारतीय चिकित्सा संघ IMA दरभंगा शाखा काल्हि एकमी घाट सँ दरभंगा जंक्शन तक निर्माणाधीन एलिवेटेड कॉरिडोर के कारण उत्पन्न गंभीर यातायात संकट पर चिंता व्यक्त कयलक है। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया जी झा प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी के पत्र पठाकर निर्माण अवधि में सुरक्षित एवं निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करबाक मांग कयलनि हैं। इनर व्हील क्लब दरभंगा के दिस सँ सावन उत्सव के आयोजन पारंपरिक उल्लास एवं उत्साह के संग काल्हिखन कयल गेल। हरियाली, सावन के गीत आ कजरी के मधुर तान के बीच क्लब के सदस्य उत्सव के भरपूर आनंद उठौलनि। मिथिला हॉर्टिकल्चर क्लस्टर के रूप में केंद्र सरकार दरभंगा के चयन कलक है। एकरा लेल 100 करोड़ रुपया के आवंटन कयल गेल है। ई जानकारी स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर देलनि। सोहन चौक सँ मकिया तक बनि रहल सड़क पर ढढ़िया बेलवाड़ा पंचायत के मिल्की गांव के लग में रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज ROB के निर्माण करबाक स्वीकृति भेटल है। ई जानकारी क्षेत्रीय विधायक जीवेश कुमार जनौलनि हैं। एहि परियोजना के लेल 76 करोड़ 38 लाख रुपया के स्वीकृति भेट गेल है आ निविदा शीघ्र जारी कऽ देल जाएत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में काल्हि विद्वत परिषद के बैसार ऑनलाइन मोड में भेल। सभा कक्ष में बैसार के बाद महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रस्ताव पर विमर्श के निर्णय सेहो लेल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के PG मैथिली विभाग में साहित्य अकादमी से सम्मानित कवि RC प्रसाद सिंह के 116वां जयंती के अवसर पर प्रकृति के कवि RC प्रसाद सिंह विषय पर परिचर्चा के आयोजन कयल गेल। वक्ता लोकनि RC प्रसाद सिंह के साहित्य अवदान पर विस्तार से प्रकाश दैत हुनका मैथिली साहित्यक युग द्रष्टा कहलनि। दरभंगाक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा अजय कुमार शर्मा काल्हि राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्र जागरूकता रथ के हरियर झंडा देखाकर रवाना कयलनि। 12 सितंबर को बिरौल न्यायालय परिसर में होबय वाला राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार और अधिक से अधिक लोक के एहि से लाभ दिएबाक उद्देश्य से ई प्रचार वाहन निकालल गेलै। एहिक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल। हालचाल के बाद आब हम मौसम पर एक नजर दै छी। मौसम के जानकारी लऽ कऽ उपस्थित छथि मनोज कुमार।
7: पूसा समस्तीपुर मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम प्रमाण के अनुसार बेगूसराय, को छोड़कर उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में के दौरान मेघ गर्जन एवं वज्रपात

0: की संभावनाएं के साथ ही साथ कहीं कहीं हवा तेज हो सकती है। इस अवधि में अधिकांश क्षेत्रों में हल्के मध्य वर्षा हो सकती है। वहीं सीतामढ़ी मधुबनी एवं पश्चिम चंपारण के जिलों में के आसपास वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान ज़्यादातर समय आसमान में हल्के मध्य बादल देखे जा सकते हैं। वर्षा की स्थिति के आसमान में घने बादल छा सकते हैं। पूर्वानुमान की अवधि के दौरान अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 32 सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि वैशाली, शिवहर एवं पूर्वी चंपारण जिलों में 34 से 36 के बीच हो सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 28 सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह में सापेक्षिक आर्द्रता 80 से 85% रहने की संभावना है, जबकि दोपहर में सापेक्ष आर्द्रता सारण, सीवन, गोपालगंज, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 40 से 45% तथा अन्य जिलों में 50 से 60% रहने की संभावना है। इस दौरान मुख्य दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावनाएं हैं।
1: तो ई छल मौसम संबंधित जानकारी। और देखू जे बात मौसम के हम सब कह रहल छी आ मौसम पर आधारित अपन सबक कृषि है, तो ओहिमे बहुत चीज कृषि में जे छै से नवाचार आबि गेलैए। आब हम सब मात्र प्रकृति पर या पारंपरिक जे स्रोत है ताहि पर निर्भर नहीं छी। नव नव ओहिमे जे छै से हमर वैज्ञानिक लोकनि जे छथि से आविष्कार करै छथि और ओकरा हम सब पालन करै छी, ओकरा अपनबै छी आ ताहिसँ कृषि में जे छै से बहुत व्यापक पैमाना पर जे छै से सुधार भेलैए, उत्पादन में बहुत बेसी वृद्धि अलैए। तो नवाचार सब चीज में छै, तो अगर नवाचार दिस अहाँ ध्यान दी तो लागत जे नवाचार के कारण एकर जे छै से बहुत रास उपयोगिता बढ़लैए और लोक एहिमे बड़ा तन्मयतापूर्वक जे छै से लागल छथि और एकर लाभ उठा रहला है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मणिकांत जी कि भारत अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जीवन की आधारशिला है। हमारे देश में बड़ी आबादी आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। समय के साथ खेती की पारंपरिक तरीकों में अनेक परिवर्तन हुए हैं। आज विज्ञान और तकनीक ने कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आधुनिक मशीन, उन्नत बीज, सिंचाई की नई तकनीकों, ड्रोन, मोबाइल ऐप, मौसम की जानकारी और जैविक खेती के माध्यम से किसान कम संसाधनों में भी बेहतर उत्पादन करने में की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब देखियो ना, पहले हर बड़द लकर लोग खेती करे छला है और बड़द एखनो बहुत ठम चलैए, लेकिन अब बहुत छोट पैमाना पर चलैए। हर बड़द के औकात कते हुई छले है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा जोतैत जे छै से ओ अकछि जाइ छलै, एकटा जन, एकटा हर, एकटा बड़द जे छै से ओहिमे लागै छलै। आब आबि गेलै ट्रैक्टर आबि गेलै और ट्रैक्टर अयलासँ की छै तऽ बीघाके बीघा खेत एक दिनमे जोता जाइ छै, तऽ ओहिसँ की छै तऽ अहाँ खेतीके व्यापकता अहाँके बढ़ि रहल है, प्रसार बढ़ि रहल है। कटनी रोपनी सभक लेल मशीन जे छै से आब अहाँके उपलब्ध भऽ गेल छै। अहाँ जे काज चाही, आब तऽ कमौठके लेल सेहो मशीन छै, अहाँ रोपनी करऽ चाहै छी, बाग करऽ चाहै छी, सब चीजके मशीन जे छै से बनि गेल छै, ओकर क्षमता बहुत बेसी भऽ गेल छै। तऽ स्वाभाविक छै जे उत्पादन दर जे छै से बढ़ि जेतै। आब श्रम जे छै से कम लगै छै, कम जन खर्चा होइ छै आ आमदनी जे छै से बढ़ि गेलैए।

0: गहूमक दौन चलै छलैए आ बड़की टाटा शीश ओकर मने भूसावला निकलै छलैए, कनी मनी गहूम होइ छलैए, लेकिन बादमे ओकर एकटा क्रान्ति अयलै, थ्रेसर आबि गेलै। थ्रेसर अयलाके बाद जे छै से आब देखियौ जे आब लोक बीघाके बीघा एकरके एकर जमीनमे गहूम करै छथि आ उत्पादन बढ़ि रहलैए। तहिना तीमन तरकारी दिस अगर ध्यान देबै तऽ तीमन तरकारी सेहो बाड़ी झाड़ीमे लत्ती फत्ती मात्र होइ छलैए, कनी मनी कट्ठा दू कट्ठामे लोक खेती करै छलाह, लेकिन आब बीघाके बीघामे जे छै से तीमन तरकारी कऽ रहल हँ। नव नव प्रयोग कऽ कऽ बेसी उत्पादन देबयवला बीआ जे छै से ओकर निर्माण भऽ जाइ छै आओर नव प्रकारक जे छै से अथी लगा कऽ कोबी छै कि आलू आलुए छै जे तीमन तरकारी छै, हँ, सभमे जे छै से नव प्रयोग कऽ कऽ नवाचारके जे पद्धति छै तकरा अपना कऽ आ हमसभ जे छै से आगा बढ़ि रहल छी आओर ओहिसँ बहुत रास लाभ लऽ रहल छी। आ बहुत युवक जे छै से आब एहि क्षेत्रमे अपन डेग बढ़ा लेने छथि, अपन एकरा आजीविकाके स्रोत बना लेने छथि एकरा।
1: हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि खेती मुख्य रूप से पारंपरिक ज्ञान और मौसम पर हमारे पूर्वज लोग निर्भर रहते थे, लेकिन किसान के अनुमान के आधार पर बीज बोते सिंचाई करती थी, किसान अनुमान के आधार पर ही बीज बोते सिंचाई करते और फसल की देखभाल भी करते थे। वर्षा कम होने पर प्राकृतिक आपदा आने पर पूरी फसल प्रभावित हो जाती थी। आज स्थिति काफ़ी बदल रही है, किसान मौसम की जानकारी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं, उसके अनुसार खेती का योजना बनाते हैं, बीज बोते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, इन सब चीज़ को अभी ज्ञान ढेर सारे मिल जाते हैं।
0: पहिने हो अपना सभक ओतऽ जे छै से ज्योतिष शास्त्र छलै, बहुत रास डाक वचन छलै, घाग वचन छलै, एहि सभमे बहुत बात कहल छलै जे कखन वर्षा हेतै, कखन मेघ लगतै, कोन हवा चलतै तऽ केना देखल जेतै, तऽ ई सभ बात पहिनेहो छलै। लेकिन आब आइके युगमे जे वैज्ञानिक युग भऽ गेलैए तऽ वैज्ञानिक युगमे जे छै से मौसम विज्ञान बहुत सशक्त भऽ गेलैए आ पल पलके खबरि जे छै से आब अहाँके मौसम विभाग द्वारा भेटैत रहैए। अहाँ देखबै जे अहाँके मोबाइल परमे 10 मिनट पहिले आधा घंटा पहिले आबि जायत जे आइ अहाँके इलाकामे मेघ लागयवला अइ, वज्रपात होवयवला अइ, आकि बिजलौका चमकयवला अइ, आकि बिहारि उठयवला अइ, ई सभ चीज जे छै से अहाँके अपडेट होइत रहैए मोबाइलके माध्यमसँ। तऽ ई बात सही छै जे सञ्चार प्रणाली आओर मौसम विज्ञानके मे जतेक विस्तार भेलैए, जतेक नव नव चीजके ताकल गेलैए आओर ओहिसँ लाभ उठायल गेलैए, बहुत बहुत नव नव मशीनसभ जे छै से आबि गेलैए, ओहूमे जे ई पता करै छै उपग्रहसभ जे छै से पता करै छै जे केना मौसम बदलतै, कतय कोन ठाम वर्षा हेतै, कोन ठाम रौद रहतै, कोन ठाम केना हवा बहतै, तऽ ईसभ चीज एकर लाभ किसान जे छै से उठा रहल छथि आओर सरकार दिससँ किसानके सेहो बहुत रास लाभ देल जा रहलैए आओर किसान समृद्धि योजना सरकार चलेने अइ जाहि माध्यमसँ जे छै से सरकार सभके आर्थिक अनुदान किसानके सेहो भेटै छै। तऽ एहि सभसँ लाभ उठा कऽ आओर कृषिमे जे नवाचार अइ ओकरा अपना कऽ हमसभ जे छै से अपन जीवन स्तरके नीकसँ सुधारि रहल छी आओर सुधारबाक जे छै से पूर्ण स्कोप बनल अइ।
1: सही कहा अपने कि अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं, पहले एक प्यारा सा गाना सुनते हैं फिर आगे।
0: हाँ, तो जखन गीत संगीत नहीं हेतै तो फिर खाली खेती किसानी या कोजारि भजला से तो काज नहीं चलते, खुरपी चलेला से काज नहीं चलते, खाली ओहि में अगर गीत बजैत रहै छै तो कोजारि खुरपी के गति जे छै सेहो कने बढ़ि जाइ छै। तहूमे जे गीत हमसभ सुनऽ जा रहल छी ओहो अपना देशसँ अपना माटिसँ जुड़ल ई गीत अइ, तऽ आओ सुनी सुन्दर सनक ई फिल्म संगीत।

0: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। वास्तव में अपन जो धरती है से एक रत्न गर्भा धरती एकरा कहल गेलै है। और एहिठाम सँ वास्तव में एक से एक रत्न आ जते फसल हम सब लै छी ई धरती सँ ओ तो सोना से बढ़ के छे। सोना तो अहाँ पहिर लिअ कि श्रृंगार कऽ लिअ, लेकिन अगर अन्न नहि भेटत तऽ भूखे भोजन केना भऽ सकै छै। पेट में खौर नहि आ सिंह में तेल, ई केना हेतै? आ भेला सँ कोनो फायदो नहि हेतै। तैं अन्न धरती जे छथि से वसुधा हमरा सबके अन्नपूर्णा के रूप में सेहो छथि और ई धरती दै छथि। और एहिमे हमसब जे चर्चा केने छलहुँ जे कृषि में नवाचार जे तकरा जे गोटे नहि अपनबै छी ओहो आब अपनाओ और नवाचार के अपना कऽ एकर उत्पादन के बढ़ाओ और एकर लाभ लिअ।
1: बिल्कुल सही कहा अपने मणिकांत जी कि केवल उत्पादन बढ़ाने का माध्यम नहीं है बल्कि किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी साधन है। विज्ञान तकनीक और पारंपरिक कृषि ज्ञान से संतुलित उपयोग से खेती को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है। आज का किसान केवल खेती में मेहनत करने वाले व्यक्ति नहीं है बल्कि तकनीक को अपनाने वाले आधुनिक उद्यमी को भी बना रहे हैं। यदि सरकार, वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और किसान मिलकर के नवाचार का आगे बढ़ाए तो भारतीय कृषि आने वाले समय में मिसाल बन सकती है।
0: वास्तव में एक दूसरा के सहयोग जे छै से बहुत आवश्यक छै। जेना कृषि वैज्ञानिक जे छै से नव नव चीज के आविष्कार करै छथि तो ओकर प्रयोग के करते, प्रयोग तो किसाने करता। आ किसान अगर ओ नवाचार के अपना में समावै छथि, अपना दिनचर्या में ओकरा अनै छथि तो तखने ओकर जे छै से प्रयोगशाला जे छै से खेत छै और खेत में प्रयोग तो एकटा प्रतीकात्मक प्रयोग जे छै से हमर वैज्ञानिक करै छथि आ कऽ सकै छथि, लेकिन ओकर असली जे परिणाम छै से किसान के हाथ में छनि। किसान जहन ओहि नवाचार के अपना लै छथि तखने ओकर लाभ जे छै से संपूर्ण देश के भेटै छै। आ बहुत रास चीज एहन छै जकरा हम तते उत्पादन करै छी जे निर्यात होइए हमरा ओतऽ सँ। तऽ एहि के लेल अगर हम श्रेय के बात कही तऽ हमर जे वैज्ञानिक छथि हुनका ई श्रेय जाइ छनि। और नव नव तकनीक, नव नव मशीन, एहन एहन मशीन के उत्पादन भऽ गेलैए, निर्माण भऽ गेलैए। अपना ओतऽ के मखान के लऽ लिअ, मखान के खेती पारंपरिक ढंग सँ अपना सभक ओतऽ चलैत रहल है, लेकिन आब ओहू मे बहुत रास चीज जे छै से नव ढंग सँ कयल जा रहलैए। और नव ढंग सँ केला के कारणे उत्पादन मे बहुत वृद्धि भऽ गेलैए। आ मखान जे है से आब देश विदेश मे अपन ख्याति के जे छै से अर्जन कऽ लेलक है और बहुत ठाम निर्यात भऽ रहल है मखान। तऽ मखान एकटा उदाहरण भेल। एहिना सब चीज मे पहिने जे छै से कने मने लोक लत्ती फत्ती पर मे जे छै से लटकबै छलै, कने करैल होइ छलै कने होइ छलै। आब अहाँ देखबै जे ट्रक के ट्रक करैल अबै छै और ओ बिकाइ छै। कोनो एहन जे तीमन तरकारी अइ जे बाड़ी झाड़ी मे मात्र होइ छलै है से आब ओकर व्यापक पैमाना पर मे खेती कयल जा रहलै है। और नव जे पद्धति छै ओहि नव पद्धति सँ खेती कऽ कऽ ओकर उत्पादन के जते जतबे दूर में पहिने खेती कऽ कऽ मानि लिअ एक मन उपजै छलै है, आब नव पद्धति सँ ओतबे दूर में खेती कऽ कऽ 10 मन 20 मन उपजायल जा रहल है। तऽ ई नवाचार के जे छै से लाभ हमरा सबके भेट रहल है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: यौ मनोज जी, गप सब तऽ बड़ा करऽ के हरदम मन होइत रहैए जे गपे पर गप, गपे पर गप करी। एखन मन पड़ल जे देखबै अहाँ जे अपना सभक ओतऽ यात्रा में लोक के बड्ड मन लगे

0: रह लिया है। आ यात्रा में पुरान जे पारंपरिक छलैया ताहिमे दूर जेबाक लेल रेलगाड़ी एकटा मुख्य साधन होइ छलैया, आओर रेलगाड़ी से लोक कतौ दूर यात्रा करै छलाह, दूर देश जाइ छलाह, या नहि तऽ बैलगाड़ी आ कि साइकिल रिक्शा एहि सबसँ यात्रा होइ छलैया। लेकिन साइकिल रिक्शा सबसँ अहाँ कते दूर जायब, ओ दूर
1: हाँ।
0: जेबाक तऽ एगो सीमा छै। आब की भेलैए तऽ सड़क मार्गसँ यात्रा करऽके जे छै से एकटा चलन बढ़लैए, ओकरा प्रति लोकके आकर्षण सेहो बढ़ि गेलैए। कारण ओकर छै, ओकर कारण छै जे ओहिमे सहजता लोकके अनुभव होइ छै, आओर ततेक संसाधन बढ़ि गेलैए, गाड़ी घोड़ाके ततेक सहजता भऽ गेलैए, आओर सङ्गे सड़क जे छै से ततेक सुन्दर भऽ गेलैए, सबठाम सड़कके विस्तार भऽ गेलैए, जे लोक आब सड़क यात्रा करब जे छै से बेसी प्रेफर करै छथि, बेसी ओकरा जे छै से अपनबै छथि। तऽ सड़क यात्रासँ बहुत लाभ होइ छै, आओर ओहि दिस आकर्षणके कारण छै जे अहाँ देखबै जे 4 लेन 6 लेन 8 लेन सड़क सब बनि गेलैए। आब अहाँ एकदम निर्बाध गतिसँ अगर अपना गाड़ीसँ जा रहल छी तऽ अहाँ एकदम जतेक दूर जेबाक हुए, जेना जेबाक हुए, अहाँ चलैत चलि जाउ, चलैत चलि जाउ, आ कोनो अहाँके पराधीनता नहि अइ। अपन गाड़ी अइ अपना, अगर अहाँ अपने नहि किनने छी गाड़ी, भाड़े पर गाड़ी लऽ कऽ जा रहल छी, तऽ तैयो अहाँके अपना अधीनमे ओ गाड़ी अइ। अगर अहाँ रेलगाड़ीसँ जायब तऽ रेलगाड़ी तऽ ओकरा मुताबिक, रेलगाड़ीके मुताबिक अहाँके चलऽ पड़त, लेकिन एहि सड़क मार्गसँ जे छै से अहाँके से सब बात नहि हैत। तैँ हमरा लगैए जे सड़क मार्ग पर लोकक आकर्षण जे छै से बहुत बढ़ि गेलैए, आओर एहिपर यात्रा केनाइ जे छै से लोक शुरू कऽ देने अइ।
1: मणिकांत जी, सड़क यात्रा का सबसे बड़ा विशेषता है कि इनमें व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा करते हैं और मार्ग तय कर सकते हैं कि वह हमें किस रूट से जाना है, कैसे जाना है। और होता क्या है कि आप जैसे बात की कि रेल से हम जाते थे, तो रेल अपने हिसाब से जाता था, तो हम चाह के भी अगर किसी कहीं जाना उतरना होता था तो नहीं कर पाते थे। पर इस रोड के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, हाँ, आपने बोला कि आप अपना गाड़ी नहीं है तो भाड़ा के गाड़ी से भी हम जा सकते हैं, तो आप जहाँ भी आप चाहें वहाँ रुक सकते हैं, जहाँ आप चाहें नाश्ता पानी करना है या कुछ घूमना फिरना है तो उस माध्यम से आप वहाँ घूम सकते हैं सड़क के माध्यम से। पर ट्रेन, बस या हवाई जहाज़ वो अपने हिसाब से चलते हैं तो वो हमारे हिसाब से नहीं चलते।
0: वो तो बात
1: इसीलिए
0: सही
1: है
0: है।
1: कि सड़क यात्रा आजकल आकर्षण का केंद्र बन गया है कि लोग अपने हिसाब से हर चीज़ को तय करते हैं। स्थान पर रुकना या स्थानीय योजना, भोजन का स्वाद लेने के लिए, सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखना और नए स्थानों की जानकारी भी प्राप्त करना हमारे लिए संभव हो जाता है।
0: हाँ, आ ओहिमे छै जे अहाँ अगर मानि लिअ जेना एतऽसँ चललहुँ हँ सड़कसँ
1: हाँ।
0: आ दिल्ली जा रहल छी, तऽ दिल्ली जा रहल छी तऽ अहाँके मोन भऽ गेल जे नहि नहि हम गोरखपुरमे रुकि कऽ कनि जे छै से गोरक्षनाथ मन्दिरके दर्शन कऽ ली, कनि ओहिसँ पहिले जे छै से गौतम बुद्धके जे निर्वाण स्थल छनि ओतऽ जा कऽ दर्शन कऽ ली, फेर मोन भऽ गेल जे नहि कनि कनि हम जे छै से रुकि कऽ अयोध्यामे भगवान रामललाके दर्शन कऽ लिअ। तऽ एहि तरहके जे अहाँके पर्यटन या दर्शनीय स्थल अइ तकरो सभक जे छै से अहाँ एकहि खर्चमे करैत जा सकै छी, लेकिन अहाँ अगर कोनो एहन सरकारी साधनसँ जा रहल छी, रेलसँ जा रहल छी या कि हवाई जहाजसँ जा रहल छी तऽ से नहि हैत।
1: तो
0: एक
1: ई
0: बेर
1: सु
0: अहाँ जतऽसँ
1: हाँ
0: चललहुँ आओर गन्तव्यपर अहाँके पहुँचऽके अइ, तऽ ई सुविधा भेलैए। आओर एकर कारण छै, मुख्य कारण ई छै जे सड़क बढ़िआँ भऽ गेलैए, सरकार जे अइ से सड़कपरमे विशेष ध्यान देलक यऽ, आओर बहुत ठाम जे छै से नम्हर नम्हर सड़क भऽ गेलैए, जतेक यातायातके जे दबाव छै ओ आब कम भेलैए, हालाँकि तथापि दिनानुदिन गाड़ीके संख्या बढ़िते जा रहलैए, आओर नव नव सड़क एखनो अहाँ देखै छी जे बनि रहलैए, बहुत ठाम एलिवेटेड सड़कके मने दुतल्ला सड़क जे छै सेहो आब बनि रहल यऽ,
1: हाँ
0: आओर ओ खास कऽ अहाँ नम्हर मेट्रो सबमे चलि जायब तऽ ओवरब्रिज पर ओवरब्रिज, ओहिपर सब ओवरब्रिज अहाँके लागत जे एकैठाम दूटा तीनटा तलमे जे छै से ओवरब्रिज चलि रहलैए, तऽ वाहनके संख्या बहुत बढ़ि गेलैए, जनसंख्या बढ़लैए तऽ वाहनोके संख्या बढ़तै, ओ तऽ स्वाभाविक छै। लेकिन जे बात हमसब कऽ रहल छी से ई छै जे सड़क मार्गसँ यात्रा करबाक आकर्षण जे छै से लोकके मोनमे बढ़लैए, आओर लोक ओकर लाभ उठा रहल छथि, आओर सड़क मात्र मार्गसँ जे छै से बेसी यात्रा कऽ रहल छथि आइके युगमे। नहि करितै तऽ रेलपरमे जे दबाव छै ओ दबावो जे छै से कम भेनाइ मुश्किल छै। अहाँ ई कहब जे सड़क मार्गसँ बेसी लोक

0: यात्रा करै छै तऽ की रेलगाड़ी खाली जाइ छै? नहि,
1: नहीं
0: कखनो अहाँ देखबै तऽ सब रेलगाड़ीमे अहाँके वेटिंग लिस्ट जे छै से भेटबे करत। कखनो अहाँ ई चाहब जे आइ हम कोनो गाड़ीके लेल टिकट कटा लिअ तऽ साइदे संजो कोनो गाड़ीमे एहन हैत जे अहाँके टिकट भेट जायत जे हँ आइके आइ आरक्षण अहाँके भेटैए। तऽ जनसंख्या बहुत भऽ गेल छै आओर ई सड़क मार्गके आकर्षणके कारण मुख्य छै जे सड़क बढ़िआँ भऽ गेलैए। गाड़ी जे छै से आब तेज गतिसँ चलयवला बहुत रास गाड़ी सहजतासँ लोकके उपलब्ध भऽ गेलैए, तैँ बहुत बढ़िआँ। आओर कएटा फायदा एहिसँ छै तैँ लोक सड़क मार्गके बेसी ऑप्ट कऽ रहल हँ।
1: सही बात है कि आपको समय के हिसाब से अपने हिसाब से आप रोड मार्ग से सड़क मार्ग से आप जल्दी पहुंचते हैं या अपने हिसाब से चलते हैं, पर बाकी सवारी जो है उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से नहीं चलते, उनके हिसाब से चलना होता है। और देखें तो आपको मतलब बहुत लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, तो आज सिर्फ बड़े बड़े रोड या सड़क ही नहीं बल्कि गाँव घर में भी देखिए तो अच्छे रोड बन गई है, अच्छे सड़क बन गई है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है।
0: तो जीवन जे से एक यात्रा है, मनुष्यक जीवन जखन से जन्म लैए लोक आ जखन तक रहैए एहि पृथ्वी पर तो यात्रा ओकरा कहै छै, आओर यात्रा अनवरत चलित रहबाक चाही। तऽ आउ हमसब गीतक माध्यमसँ एहि यात्राके आगाँ बढ़ाबी।
1: जरूर।

बहुत सुंदर ई गीत जे छै से एखन हमरा लोकनि सुनलहुँ। आ वास्तवमे जीवन जे छै से यात्रा छै आओर ई यात्राके निर्बाध गतिसँ चलैत रहबाक चाही, यात्रा रुकबाक नहि चाही, एहि बातपर ध्यान देबाक आवश्यकता छै। आओर ओ सड़क मार्ग होइ कि रेल मार्ग होइ कि वायु मार्ग होइ, सब मार्गसँ, लेकिन हमसब चर्चा ई कयलहुँ आइ जे सड़क मार्ग दिस लोक

0: आकर्षण बढ़लैए और ओहि आकर्षण के कारण जे छै से लोक बेसी ऑप्ट कर रहल है सड़क मार्ग के, तो ओहि में लाभो बहुत रास भेट रहल है। लेकिन ओकरा संगे सतर्कता राखब जे छै सेहो बहुत आवश्यक छै। सड़क मार्ग से अगर अहाँ चलै छी तो यातायात के जे नियम है ओकर पालन अवश्य करी और ओवर स्पीड में कखनो नहीं जाए। हरदम गाड़ी के अपना नियंत्रण में राखी, नहीं कि गाड़ी के नियंत्रण में अहाँ चल जाए तो अति गति जे छै से क्षति करै छै। तो ओहु बात पर में ध्यान राखक छै। बहुत रास स्लोगन अहाँ के रास्ता पर लिखल भेटैत रहत जे सतर्कता गई दुर्घटना हुई। कखनो अहाँ जे छै से बहुत ड्राइवर सबके देखबै जे ट्रक के ड्राइवर छथि खास कर जे लंबा दूरी तय करै छथि।
1: यहाँ मणिकांत जी एक बात होता है कि मतलब अच्छा स्मार्ट रोड बन गया है तो लोग अच्छा स्मार्ट तरीका से गाड़ी भी चलाना शुरू कर देते हैं।
0: हाँ, स्मार्ट तरीका से चलबै छी ओ तो निक छै, लेकिन ओकर अहाँ अगर अति सर्वत्र बढ़ जाइए ई बात के ध्यान अहाँके देबऽ पड़त जे कोनो चीज में अति नहीं करबाक चाही। आ गति के नियंत्रण जे छै से अहाँके रखबाक चाही। स्पीड लिमिट छै गाड़ी सभक, ओहि लिमिट के क्रॉस नहीं करी। अहाँ लिमिट के क्रॉस करबै तो फिर अहाँ गाड़ी के नियंत्रण में चलि जाइ छी, तो से नहीं हेबाक चाही। और चैंक सँ ओवरटेक कतऽ करै छी, कखन करै छी, एहि सब बात पर भी ध्यान दऽ कऽ राखी तऽ ई जे सड़क जे है से बहुत सड़क मार्ग से यात्रा करै बहुत नीक छै। तऽ आजुक एहि नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय जे छै से आब लागि जा रहल अइ। तऽ एहि अंकसँ मणिकांतके
1: आओर मनोजके दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार मिथिला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

साहित्य, संस्कृति और कला के उपवन में फुलायल एक गोट एहन पुष्प जाहिसँ गमकैत अछि संपूर्ण मिथिला।

0: सब दिन भरतुहार आबै छल कहियो थमहू अगला साल, हमर गर्दन काटि लेला आ अपने बनल हमालू मा।
1: गुआ सुपारी के कहल जायत अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माइटक सुगंध के सहेजे मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: अब नन्हे मुन्हे बच्चे अपनी आवाज में कविता, कहानी, पहेली और चुटकुले सुन सकते हैं फुलवाड़ी कार्यक्रम में रविवार सुबह 10:30 पर। तो रिकॉर्ड करवाएं प्रत्येक शुक्रवार 3:30 से 4 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0627222481। मोबाइल नंबर है 9430029353।
4: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
5: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने

0: पचास साल
1: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
0: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
2: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: घर घर के रवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय के रवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी। एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण के विश्वसनीय खबर, हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी। भोर होते उठ जाओ, किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि। ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल
4: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
5: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहि हैत तो खेती नहि हैत, आ खेती जँ नहि हैत, उपजा नहि हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
6: मामा बने जाने, बाबा देने जादा।
2: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
3: आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति गाम घर, संध्या 6:30 पर।
7: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। इस समय सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
8: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा, ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
11: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे

0: हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी दो दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया

0: डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
1: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल उली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
2: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है, उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
4: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur, Sitamarhi, Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
3: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is the highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
4: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
2: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of National Highway 22 in Bihar to a 4-lane standard at a total capital cost of over 3,590

0: exam reforms plan. A headline in the Tribune cites a transformative move launched by India Post to test the feasibility of last mile delivery to the country's most remote and inaccessible corners, which says where the Dakia cannot go, a drone can. In its developmental commitment to the state of Palestine, India to build hospital in West Bank seeks to deploy field hospital in Gaza, states the Hindu. On Bangladesh Prime Minister's possible visit to India, Prime Minister Modi assures him of an honourable reception, is another headline in the Tribune. New US immigration rules may mean greater scrutiny for Indians with expanded definition of public charge, reports the Asian Age. And finally, the Times of India refers to a study saying people with no high BP, diabetes or smoking habit lived nearly 13 years longer without dementia than those with all three risk factors. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves four multi-tracking railway projects covering eight districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears four-laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. Fourth round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of FIH Hockey World Cup in Amstel Finn this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों का इहाता करने वाले चार मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को चार लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और FIH हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज शाम एम्स्टल फेन में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने कल 13,000 करोड़ रुपए मालियत के पांच प्रोजेक्टों को मंजूरी दी, जिनमें रेलवे के चार और शाहराहों का एक प्रोजेक्ट शामिल है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में काबीना मीटिंग के बाद मीडिया को प्रोजेक्टों से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम की। जनाब वैष्णव ने मुतला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेर क्यादत काबीना ने रेलवे के मल्टी ट्रैकिंग के चार प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है, जिनमें चार रियासतों मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ अजला का इहाता किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन पर कुल 9,450 करोड़ रुपए की तखमीना लागत आएगी और ये प्रोजेक्ट साल 2030-31 तक मुकम्मल होंगे।
3: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: जनाब वैष्णव ने मुत्तला किया कि मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हिस्से को चार लेन वाला करने को भी मंजूरी दी है, जिस पर तकरीबन 3,590 करोड़ रुपए की कुल सरमाया लागत आएगी। जुनूबी जोनल

0: काउंसिल की 31वीं मीटिंग आज तमिलनाडु में चेन्नई के करीब कोवलम में होगी, जिसकी सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। जनूबी रियासतों के वजराए आला और तीन मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी, अंडमान निकोबार जजायर और लक्षद्वीप भी इस मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग में 6 वजराए आला हिस्सा लेंगे, जिनमें तमिलनाडु के वजीर आला जोसेफ विजय, कर्नाटक के वजीर आला डी के शिव कुमार, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और पुडुचेरी के वजीर आला रंगासामी शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान और निकोबार जजायर और लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुतालिका रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और दाखिला सेक्रेटरियों समेत आला सतही अफसरान भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। जुनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग के दौरान बैन रियासती ताउन, माशी तरक्की, सनती सरमायाकारी, शराकतदारी को मुस्तहकम करने, बुनियादी ढांचे की तरक्की, आबी वसायल साझा करने, तालीम, सेहत देखभाल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कुदरती आफात से निमटने, जराइम की रोकथाम और सरहदी तनाजात समेत कई अहम मौजूदात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक़िद होगा। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मुमलिकत जतिन प्रसाद शिरकत करेंगे। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए मैदानों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CSP रोड मैप वजा किया गया, जिसकी निकाब कुशाई गुज़श्ता साल सितंबर में सिंगापुर के वजीर आज़म लॉरेंस वोंग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालाकृष्णन के साथ शामिल हुए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के वजीर दिफा शिनजिरो कोइजुमी के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे। तवक्को है कि इस मीटिंग से दोतरफा ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी, स्ट्रेटेजिक एतमाद और बाहमी तआवुन में मजीद इजाफा होगा और भारत बहरुल काहिल खित्ते में इस्तेकाम और सिक्योरिटी को फरोग मिलेगा। दोनों वजरा बहरी सलामती के सिलसिले में बाहमी तआवुन और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत दिफाई साजो सामान और टेक्नोलॉजी से मुतालिक करीबी इश्तराक के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि इस मीटिंग से दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी तआवुन को मजीद बढ़ाने का रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम होगा। भारत में अमेरिका के सफीर सर्जियो गोर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू और कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार दिया है और कहा है कि मरकज और रियासत की हुकूमतों ने जम्मू और कश्मीर में सलामती की सूरत हाल को बेहतर करने से मुतालिक कई इकदाम किए हैं। अमरीकी सफीर कल श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत अमरीका ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज की गई और उन शोबों पर गौर व खौज किया गया जहां अमरीका जम्मू और कश्मीर के साथ मसरूफ अमल हो सकता है। जनाब अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मुलाकात के दौरान मुस्बत मसरूफियात और मुस्तकबिल के इश्तराक पर जोर दिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाबात मुनक़िद होंगे, जिसमें अरकान पार्लियामेंट, हुक्मरान BNP के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। BNP पार्लियामानी पार्टी मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए

जमगीर ने बीएनपी के अरकाने पार्लियामेंट से आज के सदारती इंतखाब में उन्हें वोट देने की अपील की। मुंतखब सदर को कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के सदर के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शिहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल होने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर गुज़श्ता माह अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज सदर के ओहदे के लिए वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान किया है। ट्रूथ सोशल पर की गई पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई मौके दिए गए, ताहम ईरान ऐसा करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन अब तेहरान के खिलाफ मुआशी जंग और अलग थलग करने की ऐसी मुहिम का आगाज करेगा जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी। उन्होंने खबरदार किया कि कोई भी मुल्क जो ईरान के माली इदारों, कारोबार, हवाई अड्डों और हुकूमती एजेंसियों की मदद करेगा, उसे संगीन इक्तिसादी नतायज का सामना करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इन इकदाम का मकसद तेल के स्मगलिंग नेटवर्क, मुआशी लेन देन, मकानात के लेन देन, बहरी जहाज़ों की रजिस्ट्री और फ्रंट कंपनियों समेत ईरान की इकतसादी शहरक को निशाना बनाना है। सदर ट्रंप ने नए इकदाम को मुआशी डी डे करार देते हुए अमरीकी इतिहादियों से अपील की कि वो ईरान को अलग थलग करने में वाशिंगटन का साथ दें। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस मुहिम का मकसद बैरून मुल्क फाइनेंस और मदद की ईरान की सलाहियत को कमज़ोर करना है। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब तेल की आलमी आमद व रफ्त की अहम तरीन आबी गुजरगाह आबनाए हुरमुज पर अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हुरमुज खुली रहेगी। ट्रंप ने दावा किया कि आबनाए हुरमुज की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बेहद मुअसर रही। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती काउंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर की आलमी हकीकतों की अक्कासी होनी चाहिए और तरक्की पजीर मुल्कों को ज्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कामकाज के तरीक़ाकार से मुतालिक UNSC के खुले मुबाहिसे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत की शाज़े दाफ़े योजना पटेल ने जोर देते हुए कहा कि इस्लाहात की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल 1945 से अक़वामे मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहतरमा पटेल ने दलील दी कि सलामती काउंसिल को उस दौरे के हालात के मुताबिक तरतीब देनी नहीं दी जा सकता। दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR में दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक नज़रसानी शुदा शेड्यूल के तहत 31 अगस्त को इंतखाबी फहरिस्तों का मुसव्वदा शाये किया जाएगा। दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन एतराज़ात से निमटने का अमल 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को हतमी वोटर फहरिस्त शाये की जाएगी। भारत के महकमा मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, मशरक़ी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक़ी भारत के हिस्सों में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। शिमाली ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, जहां बारिश में कमी के बावजूद भद्रक, केंद्रपड़ा, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिले पानी में डूबे हुए हैं। सुबर्णरेखा नदी से मुतालिक तशवीश जारी है, जो आज सुबह राजघाट पर 10.36 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में ख्वातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।
बैडमिंटन में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी बीडब्ल्यूएफ आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आज प्रीकॉर्ड

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने बक्सर से भागलपुर के बीच 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,35,000 लाभुकों को गृह प्रवेश कराएंगे। और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पटना के दियारा इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। वैशाली जिले के कई निचले इलाके जलमग्न। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि लगभग 83 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का निर्माण हाइब्रिड एन्यूटी मोड में किया जाएगा।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से बिहार में विकास के नए आयाम खुलेंगे। इससे जहां सफर में लगने वाला समय बचेगा, वहीं आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। राज्य सरकार ने बक्सर से भागलपुर के बीच 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस परियोजना समेत 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बताया कि लगभग 336 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे निजी जन भागीदारी मॉडल पर बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा।
2: बक्सर भागलपुर 6 लेन सड़क बनेगा, जो फुल्ली एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह राज्य सरकार स्वयं अपनी राशि से इसका निर्माण करेगी पीपीपी मोड के अधीन, और इसके लिए इसके आसपास जो बड़े भूखंड है उसका आर्थिक प्रयोजन के लिए रोड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन को प्राधिकृत किया गया है। इस एक्सप्रेसवे से बिहार के बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, लखीसराय, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर जिले से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी।
0: श्री सोहेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने मधुबनी के सकरी और दरभंगा के रैयाम में नई सहकारी चीनी मिलों के लिए सहकारी समिति के गठन को स्वीकृति दी है। इसमें दोनों चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र के प्रतिबद्ध किसानों को शामिल किया जाएगा।
2: सहकारिता विभाग में जो हमारा सहकारिता चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र, जिसको कमांड एरिया बोलते हैं, जितने क्षेत्रों से गन्ना जाता है एक मिल में, उसको उसका कमांड एरिया बोलते हैं, उस कमांड एरिया में प्राथमिक चीनी मिल सहकारी समिति का गठन किया जाएगा।
0: सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर रील्स या वीडियो बनाने वाले डिजिटल क्रिएटर्स को हर 1,00,000 व्यूज पर 10,000 रुपए तक के भुगतान का प्रावधान है।
2: बिहार सोशल मीडिया एवं ऑनलाइन मीडिया नियमावली के नियम 2024 के नियम 8, 6, 11, 11 ए, 11 बी में संशोधन एवं अतिरिक्त नियम 14 ए, 14 बी, 14 सी में के रूप में जोड़े जाने के लिए ऑनलाइन मीडिया संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी है। उसमें है ना, उसमें व्यूज के आधार पर जो पूर्व में आपको राशि मिलती थी या जो यूट्यूब या वीडियो जो भी बनता था मिलती थी, उसमें व्यूज के आधार पर बढ़ोतरी की गई।
0: इसके अलावा कैबिनेट ने 7 निश्चय 3 के तहत

0: प्रादेशिक नियोजनालयों का नाम बदलकर जिला नियोजनालय करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चालू वित्तीय वर्ष में निर्मित 2,35,000 आवासों में लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराएंगे। एक रिपोर्ट।
1: पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नए चयनित लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहेंगे। वहीं एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना स्थित बामिति में कृषि जन कल्याण संवाद में शामिल होंगे। राज्य के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि संवाद का उद्देश्य किसानों की आय और समृद्धि, महिला उद्यमिता, युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार तथा कृषि श्रमिकों के कल्याण से जुड़े विषयों पर चर्चा करना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक से प्राकृतिक और टिकाऊ कृषि, कृषि आधारित उद्यमिता, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और किसानों को बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ने जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श होगा। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पारंपरिक कीमोथेरेपी का विकल्प बनने में सक्षम एक नई स्मार्ट दवा के बारे में जानकारी दी है। RK251 नामक यह दवा स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए बनाई गई है। प्री क्लिनिकल अध्ययनों में RK251 ने आक्रामक ट्रिपल नेगेटिव स्तन कैंसर कोशिकाओं के खिलाफ मजबूत प्रभाव दिखाया, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं पर इसका प्रभाव बहुत कम रहा। यह दवा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और IIT गुवाहाटी के विशेषज्ञों ने संयुक्त रूप से तैयार की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। पटना के बख्तियारपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पटना के बख्तियारपुर में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे होने के बावजूद दियारा क्षेत्र की काला दियारा, रूपस महाजी, चिरैया रूपस, सतभैया रामनगर और हरदासपुर पंचायतों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए दियारावासी सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। पटना सिटी के कई प्रमुख घाटों पर भी गंगा का पानी सीढ़ियों तक पहुंच गया है। कंगन घाट पर पानी सीढ़ियों से काफी ऊपर चढ़ चुका है। इधर जल संसाधन विभाग की ओर से तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग की फ्लड एम्बुलेंस के साथ अभियंताओं की टीम 24 घंटे जरूरी सुरक्षा उपकरणों के साथ तैनात है ताकि आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: वैशाली में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। जिले के सहदही और तेसरी प्रखंड के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सैकड़ों एकड़ में लगी मक्का और परवल की फसल डूब गई है। इधर गंगा नदी का जलस्तर भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज में भी चेतावनी स्तर को पार कर गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में छीटपुट बारिश की संभावना जताई है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि राज्य के उत्तर पूर्वी, उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की आशंका है।
2: दिनांक 20 अगस्त को राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों के जिलों में तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है।
0: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में जलाभिषेक के

0: दौरान हुई भगदड़ की घटना की जांच शुरू हो गई है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सदस्य हेमराज राम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच टीम कल लखीसराय पहुंची। टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। इस दौरान टीम ने घटना के कारणों, राहत और बचाव कार्य तथा प्रशासन की ओर से किए गए इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल की। गोपालगंज के जादोपुर के थानाध्यक्ष, 2 चौकीदार और 1 दलाल को अवैध वसूली के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि थानाध्यक्ष अनिल राम चौकीदार और दलाल के साथ मिलकर लोगों से अवैध वसूली करता था।
1: 8 जुलाई को जादोपुर थाना अंतर्गत गांजे की एक रेड हुई थी, जिसमें से गांजा भी बरामद हुआ था और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए। उसी दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लाया गया। 5 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रख उनसे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं। स्टेशन डायरी के थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाया गया। छोड़ने का पीआर बॉन्ड का एंट्री है, जो कि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। सूचना हम लोगों तक आई तो डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने जब पूरी छानबीन की तो स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है, इसलिए थानाध्यक्ष जादोपुर, 1 चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की।
0: पटना के खगौल से पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 1 युवती समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी की एक अदालत ने नेपाल के रास्ते भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के मामले में म्यांमार की 1 महिला समेत 4 दोषियों को 3-3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के टिहरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार तथा हथियार बनाने के उपकरणों के साथ 1 आरोपित को गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी जिले के रेगा थाना क्षेत्र अंतर्गत संग्राम फदा गांव में एसटीएफ की टीम ने छापेमारी कर एक घर से 334 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे का बाजार मूल्य 1.5 करोड़ रुपए से अधिक बताया जाता है। मामले में 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पटना में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 10 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इस महीने मरीजों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार इस साल अब तक कुल 131 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय कैबिनेट और राज्य मंत्री परिषद के फैसलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव स्वीकृत। प्रभात खबर लिखता है, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा रोड 3,590 करोड़ से बनेगा 4 लेन। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 5 साल बाद राजद का बड़ा प्रदर्शन। दैनिक जागरण लिखता है, झारखंड में मिले 350 करोड़ वर्ष पहले के जीवन के प्रमाण। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, बिहार के सभी जिलों में बनेगी दंगा निरोधी दस्ता की इकाई। आज अखबार की सुर्खी है, पंचायत परिसीमन का डेटा आज होगा अपलोड। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनवर्षा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने बक्सर से भागलपुर के बीच 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को दी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पटना में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,35,000 लाभुकों को गृह प्रवेश कराएंगे। और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पटना के 11 इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। वैशाली जिले में कई निचले इलाके जलमग्न। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: किसानों

0: ये सुनहरा अवसर।
1: गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की बीज विकास योजना के अंतर्गत आधार बीज के उत्पादन पर 70,000 प्रति हेक्टेयर, प्रमाणित बीज उत्पादन पर 70 रुपए प्रति क्विंटल, प्रमाणित एवं सत्यापित बीज के उपयोग पर 260 रुपए से 310 रुपए प्रति क्विंटल तथा सिंगल बर्ड प्लांटलेट पर 15,000 प्रति एकड़ तक आकर्षक अनुदान का लाभ उठाइए।
0: योजना का लाभ लेने के लिए ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्नत बीज अपनाइए, अधिक उपज पाइए।
1: गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

गुजार हो गई हूँ और औलाद कभी वालदैन का कर्ज नहीं चुका सकते। आइए ना, मुझे अपनी दुआओं के साए में रुख्सत कीजिए। ये कहते हुए कशफ ने शम्स को खींचा तो यकबारगी वो उठ खड़ा हुआ। हाँ चलो मैं आता हूँ, कहकर फिर बैठ गया। कशफ गमजदा थी पर अपने घर बसने की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और वालिद की इस कैफियत को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब्बू को आज अचानक से क्या हो गया है। वक्त की रफ़्तार ने सबको रुख्सती के दरवाज़े पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां कशफ अपने अब्बू से लिपट कर रोए जा रही थी। पर जाते जाते उसने अपने अब्बू के कानों में धीरे से कहा, अब्बू मैं तो खुशी खुशी जा रही हूँ, आप गमजदा न हो, अगली बार ऐसा मौका नहीं आएगा। अगर हो सके तो अपनी बेटी से अपने दिल की बात ज़रूर कहिएगा जो आपने अपने अंदर छुपा रखी है। अल्लाह हाफिज़। शम्स सिर्फ हाँ बेटा बोलकर रह गया और वापस अपने कमरा में जाकर मगरिब की नमाज का मुंतजर था कि कब अजान हो और नमाज अदा करे। नमाज मगरिब अदा कर शम्स मुसल्ला पर बैठा माजी की उन तस्वीर को साफ देख रहा था जो बरसों से धुंधली पड़ी थी। अब्बा हाथ उठाए अल्लाह से बाजी की सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए रोए जा रहे थे और मैं दरवाजे पर खड़ा देख रहा था, पर मैं कुछ कह नहीं पा रहा था कि बाजी की तबीयत अक्सर ख़राब होने की वजह उनकी कम उम्र में शादी के साथ साथ नौशे भाई का उनसे तल्ख सलूक और गुस्सा से भरी उनकी शख्सियत कहीं ज़्यादा ज़िम्मेदार है। मैं तो अक्सर बाजी के ससुराल जाता था, मेरी भोली भाली बाजी जैसे घर की मालकिन नहीं सिर्फ नौकरानी होकर रह गई थी, जबकि इन दोनों के अलावा घर में था ही कौन, इनकी सास और मेरे चार भांजा भांजी। हाँ उनके कुछ रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता था। सर दर्द की मरीज़ कब बनी बाजी वो खुद भी नहीं जान पाई और इलाज के नाम पर सिर्फ पेन किलर। एक ही बार तो मेरा बाजी के यहाँ लंबे वक्त तक रहना हो पाया था, कुछ काम की वजह कर मैं नवादा में रुका हुआ था। करीब चार माह से मैं वहीं था बाजी के साथ। इस दौरान वो सारी हकीकत मेरे सामने आ गई जो शायद ही कभी बाजी बता पाती। मैं हैरान था, छोटी कद की मेरी बाजी इतनी बड़ी हो गई कि अब्बा से तो क्या अम्मा से भी कभी अपनी तकलीफ़ नहीं बताती है, बताती भी तो कैसे, कौन सुनता है शादी के बाद बेटी की, और सब कहते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, शायद यही वजह रही होगी। तभी स्टोव से उठती तेज़ लिपट ने मुझे यकबारगी डरा दिया। अगर स्टोव ने आज बाजी को जला दिया होता तो उन मासूमों का क्या होता। इसी सोच में मैं बाजी के करीब गया और स्टोव उनसे लेकर जलाने लगा। बाजी ने सर पर दुपट्टा बांधा हुआ था और अपने दर्द को जब्त का जामा पहनाकर हिम्मत की लालटेन से खाना बनाने की इस कोशिश में थी जो आज मुमकिन नहीं था। पर जैसे ही मैंने स्टोव जलाया, बाजी ने फौरन से कुकर उस पर रखते हुए कहा, शुक्रिया शम्स, आज तो लगा वक्त पर खाना नहीं बन सकेगा, एक और स्टोव जला दो तो तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। मैं बाजी को देखे जा रहा था, अपने दर्द का एहसास नहीं है उन्हें और मेरी चाय की फ़िक्र है। मैंने कहा, बाजी आज मुझे चाय नहीं पीनी, आपको पीनी है तो मैं बना दूं। पर बाजी ने नहीं में सर हिला दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठी तो बोली, मुझे सर दर्द में चाय और स्टोव की आवाज़ कुछ अच्छी नहीं लगती, बोलकर फूट पड़ी। मैं करीब गया तो लिपट कर रोते हुए बोली, आज अगर तुम नहीं आते तो मैं खाना भी नहीं बना पाती, और गहरी सांस लेकर चुप हो गई। कुकर की सीटी ने अपनी तरफ ध्यान खींचा तो बोली, ज़रा स्टोव कम कर दोगे, जैसे वो मेरा एहसान नहीं लेना चाहती पर मजबूर थी। मैंने उस दिन पहली बार बाजी के साथ रोटी सेंकी। बच्चे छोटे थे, अंधेरे में खामोश बैठे सब देख रहे थे। कहते हैं बच्चे माँ से बहुत प्यार करते हैं, शायद इसीलिए आज शरारत नहीं थी उनमें और लाइट भी आज न आने की कसम खाकर गई हुई थी। अल्लाह का शुक्र था कि किसी तरह खाना बना। बच्चों को दूध रोटी की आदत ने बाजी को थोड़ी तो राहत दी थी, बच्चे भी खाना खाकर अंधेरे में कब सो गए पता नहीं चला। दोनों भाई बहन आखिरी रोटी सेक कर बैठे ही थे कि सारे दिन का गुस्सा लिए बुदबुदाते हुए नौशे भाई ये बोलते हुए घर में दाखिल हुए, आज लाइट को भी नहीं आना है, साला जब

0: काम रहता है तभी ऐसा करता है। ये कमबख्त लाइट वाला भी ना। तभी मैंने उनको छेड़ते हुए कहा, काहे मुझे गाली दे रहे हैं, साला तो मैं ही हूं ना, चला जाऊंगा कुछ दिनों में। तब उनका पारा थोड़ा डाउन हुआ। तुम भी ना यार, तुम्हें कौन बोल रहा है? अब बारी थी उस खाने की जिसमें सब कुछ था सिवाय नमक के। ये भी अल्लाह की मसलहत, सबसे पहले निवाला मैंने उठाया, पर मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही सब्जी का प्याला बाजी की तरफ फेंक दिया गया। बस इतना ही काफ़ी था एक तकलीफ से गुजर रही बीवी की तकलीफ को और बढ़ाने के लिए। बाजी कांप उठी, क्या हुआ ये भी न पूछ पाई। यही खाना बनाना सिखाया है माँ बाप ने? साला दिन भर खट कर आओ और फीका खाना खाओ, और सबकी बीवी को जाकर देखो घर से लेकर बाहर तक संभाल रही हैं। यहाँ सिर्फ घर में रहना है और दिन भर आराम करना है, तब ये हाल है। बाजी सिर्फ रोए जा रही थी। बाजी तो ये भी न कह पाई कि इसके सर में कितना दर्द है। पर क्या, सर पर बंधा दुपट्टा भी न देख पाए वो। मैंने बीच बचाव में कुछ कहना चाहा तो ये बोलकर रोक दिया कि बहन का पार्ट न लो यार, तुम चुप ही रहो। कुछ बोलता तभी बाजी ने दूर से ही हाथ जोड़ लिया। मैं उठा नमक लाने तो बाजी ने मुझे रोक लिया और खुद कुकर में सब्जी डालकर नमक मिला लाई। पर अब किसकी भूख बची थी। मैंने किसी तरह एक रोटी पार की, पर वो दोनों भूखे ही रह गए। लाइट आ ही गई, पर हैरानी तब हुई जब बच्चों को सभी ने बैठा देखा। सुबह बाजी का उतरा चेहरा और सूजी आंख बता रही थी कि वो सारी रात रोती रही है। मैं हफ्ते बाद वापस आ गया और इसी दौरान एक गैस चूल्हा लाकर रख दिया और बाजी को इसे जलाना सिखा दिया। अब आग के शोले बाजी को न झुलसाएगी, ये सोचकर थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। अब्बा से कुछ कहता भी तो क्या, तब मेरी आमदनी कुछ खास नहीं थी और अब्बा के सामने कभी आवाज़ तक नहीं निकालता था, वो भी उनके दामाद के खिलाफ। इतनी हिम्मत तो मुझ में कभी न थी। मैं अक्सर काम के सिलसिले में नवादा जाता रहता, बाजी के घर ही ठहरता, पर अफसोस मैंने कभी नौशे भाई को समझाने की कोशिश नहीं की। दिन गुजरे और देखते ही देखते छोटी बहन की भी शादी हो गई। बड़ा अमीर ख़ानदानी लड़का, और क्या चाहिए। ठीक है, बस उसके शौहर का भी मिजाज अल्लाह खैर फरमाए। यहाँ तो मैं बड़ा भाई था, यहाँ तो मैं कुछ बोल सकता था, पर जब बात छोटी बहन की तलाक तक पहुँची तब भी मैंने एक लफ्ज़ कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों, क्या भाई होने के नाते मेरा फ़र्ज़ नहीं था कि मैं कोशिश करता कम से कम एक बार बात तो करता अपने बहनोइयों से। और आज जब बात मेरी कशफ की थी तो मैंने कोशिश की। क्यों? क्योंकि मैं एक बाप बन गया हूँ, बेटी की बसी बसाई ज़िंदगी बर्बाद न हो, इसकी खुशियों पर ग्रहण न लगे, इसलिए मैंने न सिर्फ कशफ के शौहर से बल्कि उसके ससुराल वालों से भी बात। और देखो आज कशफ रुखसत हो गई। आखिर इंसान को तो समझाया ही जाता है, अगर बात अच्छे से रखी जाए और सामने वाला थोड़ा भी अल्लाह का खौफ रखता हो तो वो ज़रूर सही और गलत समझ लेता है। मुझे मेरी बहनों के लिए भी यही कोशिश करनी चाहिए थी। जब उनके शौहर उन्हें अपने पांव की जूती समझ रहे थे या फिर निकाह की शक्ल में लाई हुई घर की नौकरानी, मैंने अपनी नज़र के सामने अपनी बड़ी और छोटी बहनों पर उनके शौहरों की तरफ से जुल्म होते देखा। पर कभी भी एक लफ्ज़ सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पाया। जिस तरह मेरे ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी है, उसी तरह मेरी बहनों की भी जिम्मेदारी मुझ पर थी। आखिर मैं उनका भाई हूँ, पर अपनी बहनों की तरफ से एक बार भी उनके शौहर से बात तक नहीं की। समझाने की कोशिश तो दूर की बात है। हो सकता है काशिफ की तरह मेरे दोनों बहनोई भी समझ जाते मेरी बात को। मुसल्ला पर बैठा शम्स अब फूट पड़ा। तभी उसकी बीवी आई, क्या हुआ आपको, क्यों रोए जा रहे हैं? और शम्स सिर्फ कहता जा रहा था, सवाल तो मुझसे भी होगा, सवाल तो मुझसे भी होगा।
1: सामीन, आप सुन रहे थे अफसाना मौजूदा सवाल मुझसे भी होगा। अफसाना निगार थे जनाब सैयद असगर अली। अब चलते हैं शेर व शायरी की जानिब और कलाम शायर के तहत आज अपना कलाम लेकर हाजिर खिदमत हैं जनाब मुनाजिर हसन।
2: غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے، جس جگہ فاصلے غرقاب ہوا کرتے ہیں، جس جگہ فاصلے غرقاب ہوا کرتے ہیں، وہ جز

न छुप सकेगा ये गम कह कहा लगाने से, न छुप सकेगा ये गम कह कहा लगाने से। और ये शेर देखें, अर्ज किया के दीदो

0: ऐसे
1: कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश कर रहे थे जनाब मुनाजिर हसन। अब चलते हैं बज़्म मौसीकी की जानिब, और बज़्म मौसीकी में पेश खिदमत है ये उम्दा सी गज़ल, आवाज़ है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की, और कलाम है रफ़ीक हुसैन का।

0: सब दिन बरतुहार आबै छल कहियो थमहु अगला साल, हमर गर्दन काटि लेल आ अपने बनल मालूम।
1: गुआ सुपारी के कहल जात अछि, मुदा अखन कहै छियनि कि गुआ कनि आनि के दिया तऽ बहुत कमे लोक हेता जे गुआ बुझि के सुपारी बुझि के आनि के देता।
2: अपन परम्परा, अपन संस्कार, अपन माटिक सुगंध के सहेजित मैथिली कार्यक्रम सिंगर हार।
3: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कश्मीर की गली में। गीत के बोल SH बिहारी के, संगीत निर्देशन OP नैयर का था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
4: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
3: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
4: कहाँ से पता चलेगा?
3: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
3: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
6: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

0: तुमसे अच्छा कौन है। इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो

0: अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: विज्ञापन से पूर्व आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म जब जब फूल खिले में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

राजकुमार फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीत के बोल हसरत जयपुरी के।

0: संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेरे सनम में। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था ओपी नैयर ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

राहत इंदौरी के लिखे इस गाने को हमने लिया था फिल्म करीब से। आवाज़ें कुमार सानू और संजीव ने की। संगीत निर्देशन अनु मलिक का था। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

अभिजीत को अभी आप सुन रहे थे फिल्म अंजाम में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था आनंद मिलिंद ने। हमारे कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी।

शंकर महादेवन को अभी आप सुन रहे थे फिल्म औजार में। राहत इंदौरी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अनु मलिक ने।

बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इस फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था विजू साह ने। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से।

शंकर महादेवन और हेमा सरदेसाई को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बीबी नंबर 1 में। समीर के लिखे इस गाने को संगीत दिया था अनु मलिक ने।

ताल फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले, आदित्य नारायण और ऋचा शर्मा की आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गाने को संगीत दिया था AR रहमान ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी हमारी स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत, कलाकार हैं पंडित भीमसेन जोशी।